0: सिमर रसा सतगुरु दे प्यारे
1: भगत करो मन लाए
0: मन बंचत नानक फल पाए
1: सतगुरु चालस तीर तहां
0: तू क्या लपटावे मूर्ख ना
1: उम्मीद कुटुंब अरवंता
0: इनते कहो तुम कवन सनाता
1: रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: तीरथ असवारी
0: झूठा डांग झूठ का सारे
1: दिए तिस बुझा ना बिगाना
0: नाम विसार नानक पर

0: जनम जनम के कीर्ति जाए।
1: आप जपा हो अबरा नाम जपा
0: सुनत कहत रह गत हो
1: सत हर को नाम
0: सहस भाई नानक गुण गाओ
1: गावत तेरी उत्तर समय
0: बिनस जाए हमें बिक फैल
1: चिंत बसे सुख नाल
0: सास ग्रास नाम समार
1: स्यान पसगली मना
0: सास पावे सत नाम
1: जी सच करो
0: यह सुख दर्ग है।

0: कृष्ण महासुख होए
1: हर रस पावे बिरलावे
0: अध्यासे जन त्रिपताने
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने
0: पर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाव सागर के संग
0: सर्व आन सब त्याग
1: अंतर प्रकाश अंधेर ले लाग
0: बाकी जपिया प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: की मनसा पूरी पई
1: सतगुरु ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु होयो
1: सेवकीनो सदा निहाल
0: काट मुकत जन भया
1: जन्म मरण दुख रहया
0: इस पूरी श्रद्धा सब पूरी
1: रव रया सत्संग हजूरी
0: इसका साथ इंदिया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: सो को बिसरे जे काल न पाने
1: सो को बिसरे जे किया जाने
0: सो को बिसरे जिन सब किछ दिया
1: सो को बिसरे जे जीवन जिया
0: बिसरे जे अगन में राखे
1: गुर प्रसाद को बिरला लागे
0: बिसरे जे बिकते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गाडे
0: पूरे तत यह बुझाया
1: प्रभ अपना नानक जन ते आया
0: संत करो एक काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो हर नाम जपावो
0: तरिये संसार
1: बिन भक्ति तन होशियार
0: साथ
1: चरण

0: भगत सदा कृपाल
1: नाथ गोविंद कृपा
0: सर्व कटा करत प्रताल
1: पुरकार करता
0: भगत जना के प्राण आधार
1: जपै सो होए पुनीत
0: भगत पाए लावे मन हीत
1: गुण यार नीच अजान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व बैकुंठ मुक्त को पाए
0: एक निमंत्रण के गुण गाए
1: राज भोग बढ़ाए
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का पर संगी
0: रसना जपती हर हर नीत
1: करनी शोभा तनवंत
0: हृदय बसे पूरन गुरु

0: पुंतक कहते होता
1: तारी अपन सुन समाद
0: तब पैर विरोध के संग कमात
1: तब अन चेह न जापत
0: तब हरक सुपो किसे व्यापत
1: अपन आप पार ब्रह्म
0: तब मोह कहाँ के सोवत परम अपन
1: खेल आप वर्तिजा
0: नानक करने हारा दूजा
1: भूत प्रभु केवल तनी
0: बंद मुक्त को किसको गने
1: एक हर अगम अपार
0: तब नरक सुख को कौन अवतार
1: गुण प्रभु सहि सुभाए
0: तब शिक्षकत कहो के ठिकाए
1: आप अपनी जोत धर
0: तब कवन डर कवन कर डर अपन
1: चलत आप कर निहार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: सुख अपन आसन
0: तै जन्म मरण को कहां विनाशन पूरन
1: करता ब्रह्म सोई
0: तब जम की त्रास कहो के सोए
1: अगत अगोचर ब्रह्म एका
0: तब चितर गुपत के सूचत लेखा
1: नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन भागे
1: आप ही चर्चा
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा
1: निर्मल पुरख पुरख पद होता
0: तहि मैल कहो क्या तोता
1: निरंजन निरंकार निर्वाण
0: तै कौन को मान कौन अभिमान
1: केवल जगदीश
0: तै छा छिदर लगत को घीस
1: जो सोपी यो संग समावे
0: तै किसे भूख कवन तृप्तावे
1: करावन कर निहार
0: नानक करते का नाही सुमार
1: अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: तथा कवन नाही बाप मित्र सत पाई
1: सब कला आपे पर भी
0: तै भेद के महा को चीना सगन अब सगन कहाँ बेचारे
1: अपन ऊंचे अपन आप नेरा
0: कौन ठाकुर।

0: ऊपर हो वट के पाल
1: तब जाने आप
0: अंतर जाने रहो आप
1: जीन को
2: जो जो रचे सो किसे आते आत
0: भगत हरे हर के गुराए
1: तन विश्वास कर मान्या
0: करन हार नानक एक जान्या
3: जन बाबा हर एक के नाए
0: इसकी आस न दिखती जाए
1: तो सेवा बन आई
2: उका भोज परम पद

0: कोहन माहे
1: नानक भोर न आवे जाए
0: दुख हट हो जाए
1: उबरे रख न हार जाए
0: सगल को मिटाए
1: कृपा ते प्राणी छुटे
0: राखे जिस नाही दुख
1: नाम जपत मनोवत सुख
0: जाय मिटे अहंकार
1: जन को होए न पंचन हार दर्शन सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: सेवक परमान
1: अंतर जामी पुरक प्रदान।

0: सुनाए बुरा
1: देख भोग ने करा
0: भला कर तू थतने की
1: आपे जाने अपने जी की
0: साज तारी संसार च
1: ओ तू तापन सराच
0: गतमित कही न जाए
1: दूसर होए ता सो जी पाए
0: किया सब परवान
1: गुर प्रसाद नानक के जान
0: ते सदा सुख होए
1: आप मिलाए रहे प्रभु से
0: तनवंत कुलवंत भगवंत
1: जीवन मुक्त जिधर है भगवंत
0: तन तन तन जन आया
1: जिस सर सब जगत तराया।

0: आते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कल प्रसाद दया प्रतारी
1: नानक निभे हमारी
0: की उत्तत करो संत मीत
1: सावधान कर जीत
0: सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निदान
0: विचार ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सबते उच्च पाए स्थान
1: वरना होया वचन
0: भाग चले जन सोई
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: शांत रिद्ध नाम नेता
1: बुद्ध ज्ञान सरत सिद्ध
0: या तप जोग ब्रह्म ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: आप पदार्थ कमल प्रगास
1: सबके मद सकल के दास
0: चतुर्थ तत्व कविता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: हे फल तिस जान के मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन

अनेकानंता तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप जपह बेनता तेरी अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझ जीवड़े अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुझे आपे पावे सोई वरता जी तू आपे करह सो होई।

थी सी, जो तू दे सोई हम पाई रहाओ। सब तेरी तू सब निध्याया, जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियावो सब तुझी ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी चंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जानाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

जाओ भाई। पुनराच का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते पई सभी ने आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुस्तन दा गरीबन बाजा।

होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब बैत मुकाबो हो, आप हाथ दा मोहे बचाबो हो, सुखी बसाए मोर परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की राह प्यासा, तुम तो छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है, आप हास दे मुझे अबरिया है, मरण काल का त्रास न वरिया है, ऊ जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुझ जो करहु रच्छा।

चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बमतराओ काल पाई शिवजू अवतरा काल पाई कर विष्णु प्रकाशाओ सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक संवाना नमस्कार हता हूँ मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आपस वारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो।

दिहु पादा जब यहाँ कर करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तरसब हो जेते बदनों श्रेष्ठ सवतारे आप अपनी बूझ उचारे।

दिन के तुम संकट सवटारे। जो कल को एक बार त्याए है ताकि काल निकट न है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिठ डरंत काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछ सकै न कोई।

जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए हैं संत अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा काल पुरब की देह मो कोटक बिसन महेशो कोटिंदर ब्रह्म किते राक्षस करोर जले सो दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत ने तो स्वर्ग बास राग बरकरा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुना अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्या छप सका न कोई सम्मत 1755 हाड़ वधि प्रथम सुख दावन तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लियो सुधारा दोहरा नेत्र तों के चरण तारो तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बस बाद में बादो ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गह जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र

करते रह। सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसे आओ, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टा हो, जिस दिया एह वड्याइया। कह नानक सुनहो संतो हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागै, कर सपागै शब्द वाजे, काला जित कर तारिया। पंच दोत तुद वस कीते, काल खंड कुमारिया, तुरकन पाया तुजिन काओ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख होवा, तित घर अरहद वाजे। अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोहरत पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संता पुत्रे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहिया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तोरे। सुन

तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार उकरे तेरा कारग सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस देहि सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी।

नमो घर्ता नमो रागुप्पे नमो साह नमो पूपे नमो दान दानी नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्त नारंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बोध दा करता अधो उर्ध अर्धंग अगंग करता परम परम परमेश्वर परम पुष बालंग सदा सर्वदास दाता दयालुंग छेदीय भेदीय नामं काम समस्त उपराधि समस्त स्थावं तेरा जोर चात्री छंद जले है थले है पीत है पेय है प्रभु है जू है दिस है पीस है पीस है उपजंग प्रयात छंदे अगाथे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमस्रमाने समस्त निदाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो बाह बाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीजे अखे जय पिजे समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूप एको कर्म प्रणासी सदा सर्वदारे दिसदंग निवासी चरपण चंद प्रसाद अमृत कर्म अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल त्रमंगला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूहाल चंद प्रसाद आदि रूप अनादमूर्त जौन पुरख पारु सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन कालु जतर तत्र बिराजहि अवधूत रूप लसालु नाम ठाम न जात जाकर रंग नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न देख आदि पुरख उदार मूर्त अजौन आदि असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामु न जाय सर्वमान सर्वत्र मान सदा मन ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को पर एक देवे न जानहि जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानहि कह जे तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्कर बकर फिराए चतर चक मान ही पुरतीन लोग चाहदा के बिखा जग जापे जह जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जे थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व सर्व त्योस जम पभगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परमरात पूता लख भेस अंग राग नरंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर भजन आदि रूप अछूत अंगहीन भंगनात्मिक पुरख पारु सर्व लायक सर्व काय सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यान भेख सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अरलेख परम भेद पुराण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवै वचित मद भार चंद तप प्रसाद गुण गण उदार महिमा परस्तन भंग पाना गण भव प्रकाश निस्त्र नास आजन बाहु साहु साहु राजन राजु पान पान देवन देव महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंग रंक कालन काल अनपूत अंग अबा पहंग गात मित पारु गुण गण उदारु मोन गण प्रणाम निर्भय निकम अत दुत प्रचंड मितगत अखंड आलिसा कर्म अदृशा धर्म सर्वा परनाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारी अपारी हरियंग करियंग निनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर
चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म अजाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिश अदिश अदृश अकृश भगवती छंद प्रसाद कथते के अछिज दिस के अभिज पिस के अगंध कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के अदित सुख के अवधूत वर्ण के विभूत करण कि राजन प्रभा है के धर्मंग तुजा है के शोक वर्ण है के सर्वा भरण है के जगतन कृतियाँ के छतरंग छत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुप अनुप के याद अदेव है के आप अपेव है के छतरंग बिहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कर रही मारे हक कपाक बेअब है के गैबल गैब है के अफल गुना है के साहन साह के कारण कुनिंदा है के रोजी देहंद है के राज करी मैं के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र जाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंताव के सर्वत्र गंताव के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र माने सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापया के सर्वत्र थापया के सर्वत्र पाना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कली में के परमंग अफी में के आकुल अलामय के साहब कला में के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशर सलाम सलीखत मदाम गरीब सकस्ता गरीबल प्रस्ता है बिलांदल मकाना जिमिन जमाना है तमिजल तमाम है रुजल नदाना है हरिफुल रजी मैं रजायक यकीन है अनेक तरंग है भेद है भंग है जीजल नवाज है गरीब खुराज है निरुक्त स्वरूप है तेरे मुक्त विभूत है पर भुगत प्रभा है सजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम निर्बाद स्वरूप है गाद अनूप है ओ अंग आदि रूप है अनास रूप है अनंगी अनामे तिर भंगी तिर कामे तिर वर्गी तिर बाधे अगंजे अगा दे सुभंग सिर भागे सो सर्व अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं छेज हैं चूत हैं कि नरक प्रणास हैं प्रचल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा सदा एवं सदा हमें भुगत स्वरूप हैं पर जुगत अनूप है निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं पर जुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अपेख है लेख है भरम है कर्म है अनादि जुगा दया जय है वह है भूत हैं तूत है अनास हैं दास हैं धंध हैं बंध हैं भगत हैं ब्रुक्त हैं नास हैं प्रकाश हैं अनचिंत हैं सुनंत हैं अलिख हैं अदेख हैं अलेख हैं भीख हैं अटा है गा हैं असंभ हैं गम हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं जाद हैं चरपट छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता प्रशावल छंद प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अभंगंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकुं शरीक अमित अमीक सदैव प्रभ अजाह अजाह भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर के हाजिर हजूर हमेश्वर सलाम है समस्तल कलाम के साहब दिमागे के हुसन चिरागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहिंद है करीमल कमाल कुशन जमाल गरीबल खराज गरीबल नवाज हरिपल सकान है रासल पकान कलंक प्रणास समस्तल निवास है अगंजल गनीम रजायक रहीम है समस्तल जबाह के साहब किराह के नरक प्रणास बहस्तल निवास है
ਕਿਸਰ ਬੁਲਗਵਨ ਹੈ ਮਿਸਰ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾ ਮਲ ਤਜੀ ਮਹਿ ਸਮਸਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰਗ ਪਰਮੀ ਸਹਿ ਸਮਸਲ ਅਦੀਸਿਆਂ ਦੇ ਸਲ ਲਿਖ ਹੈ ਮਿਸਲ ਭਿਖ ਹੈ ਜਿਮੀ ਨਰ ਜਮਾ ਹੈ ਕਰੀ ਮਲ ਕਮਾਲ ਕੇ ਜੋਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਤਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਉਪਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਕਿ ਅਤਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਬਦਾਮ ਅਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਮੰਡ ਅਨਪਹੁਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮਦਾਮ ਅਨਛਿੰਗ ਅਨਛਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਭੰਗ ਪਾਰ ਗਾਤ ਮਿਤਲਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬਿਅੰਤ ਅਨਪਹੁਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰਤ ਰਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰਤ ਰਾਸ ਆਜਨ ਬਾਹੋ ਇਕ ਸਦਾਹ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਣਛਿਜ ਗਾਤ ਅਜਿਜਨਾ ਬਾਤ ਅਣਝੰਜ ਗਾਤ ਅਣਅੰਜ ਬਾਤ ਅਣ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਠੱਟ ਅਪਾਰ ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲਾ ਹੈ ਅਰਕਾਲਾ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਅਬਾਰਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਨ ਹੈ ਜਾਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨਮਾਨ ਹੈ ਜਗ ਜਨ ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ ਸਰਪਾਸ ਸਵਰਨਾਸਾਈ ਕਰਨ ਕਰ ਹੈ ਬੇਸੋਂਬਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਣਾ ਕਰ ਹੈ ਜਪ ਜਪ ਹੈ ਥਪ ਥਪ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਬੇਸਵੰਭਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਾ ਹੈ ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ ਪਾਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰਗ ਦੇ ਭੂਤੇ ਕਲੰਕਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਕਾਮੇ ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਕਸ ਗੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਗਾਹ ਟਾਹ ਅਨਾਥੀ ਪ੍ਰਮਾਥੀ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਭਰਮੰਗ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਬੇਭੂਤੇ ਸਮਸਤਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਵਧਰਮੰਗ ਬੇਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾਨੰਦ ਸਤਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਏ ਵਿਭੂਤੇ ਕਜਾਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਅੰ ਕਰਿਅੰ ਕਰੀ ਮੁਰ ਰਹੀਮੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਜਿਅਮ ਭਵੁ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ

ताज तृष्णाओ बहुत नाही बुरनाओ खन्ने हो तिखी वाल हो निकी इत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जनी आप तजिया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाह विचला स्वामी हो क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाह विचला जिन मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब जो भावत बच लावे एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सदा सुगुरु सुनाया। शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तनका मन मसिया जन तन हो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे कर हैं गल्लां गली किन न पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जनाऊ जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कटम सहत स्यों पवित संगत सबाइया कह दे पुत सुन दे पुत से पुत जिनी मन वसाया कह नानक से पुत जिन गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै बिन सहजा सहसा न जाए न जाए सहसा कत संजम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मिलिन है कत संजम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजा इव सहसा इव जाए। जीहो मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जियो ता मैले इतनी जन्म जू बह हारिया ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨ ਹੋ ਬੇਸਾਰਿਆ ਬੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹ ਨਾਹੀ ਫਿਰਾਂ ਜੋ ਬੇਤਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਹੋ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਸ

मोहो बै हृदय तन सिमाणी ही पीव अमृत सदा रहो हर रंग जपहु सारंग पाणी कह नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची अख बखाणी हर हर नित कर हर सना कह कछु न जानी चिर जिनका हर लय माया बोलन पैर बाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ावो शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समावो शब्द सेती मन मिलिया चलाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ावो सिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म रताए वेखै गुरमुख साहिब बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन मसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सिउ लिमलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सारण जानी गुरु बाजो तत्तै सारण जानी तेह गुणी संसार भ्रम सत्ता सत्या रहण बिहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन मस्या बोल अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनु अण दिन हल लागै जागत रहण बिहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्या मनोह मसारी मनोह क्या मसारी ए वड दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे उस नू केह पोहे न सकी जिसनू अपनी लिब लावे अपनी लिब आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक वड दाता सो क्या मनोह मसारी है जैसी अगर उदर मह तैसी बाहर माया माया अगर सब को जेही करता खेल चाया जां तिस भाणा तां जमया परवार भला पाया लिव चुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया एही माया जित हर विसराई महबुजा पह दूजा लाया कह नानु गुर प्रसादी जिनल विला गीतनी विचे माया पाया हरे आप मुल्क है मुल न पाया जाए कि सब टोहरा है लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिलाए तिसनु सर संपिया विच हुआ पुजाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हरे आप मुल्क है भगत न के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी एहो तन तना मिलिया जिने हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन हो वा बन जा रहा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए हुरत कितै जचर हर रस पल्ला न पाए

पौड़ी जिते अंदर सबको विघनदरी हेठ चलाएदा आपे देवड़े आया आपे ही करम कराएदा वडो वडा वडवेदनी।

सहो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेट तो उदा। वाहिगुरु दे रमंती राम सर्व व्यापक अकाल पुरख दे नाम जपे तो बिना किसी की भी ये विचों गति नहीं हुंदी। माया विच माया दे बंधना तो छुट्टिया नहीं जांदा है, गत नहीं काई किसी की मुक्त नहीं हुंदी है। संसार विच माया दी वासना विच ही जीव लगे हुए वासना दे अधीन ही आउंदे जांदे। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी, जे ही सुरत ते है राहे जाए। सुरत विच जो हुंदा फुरना, जो संकल्प हुंदा है वासना दे, ओह जे राहे सुरत जीव आत्मा चली जांदी, अगला जन्म मिलता है। वाहिगुरु दा जे राम नाम नहीं, सर्व व्यापक अकाल पुरख का सिमरन नहीं है, हृदय विच याद नहीं, इहदे तो बिना फिर इहदी वासना माया दी प्रबल है। प्रबल वासना विच जीव जिहड़े ने मुक्त नहीं हुंदे, 84 दे गेड़ विच पै जांदे ने, हिसाब किताब विच पए रहिंदे ने। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेट तो उधार। ये पूरा गुरु जे मिलाप हो जाए, भेट तो मिलाप हो जाए, पूरे गुरु दे नाल मिलाप हो के सतगुरु नाम दी दात देंदे ने, नित नेम झोली विच पाउंदे ने, रहत मर्यादा देंदे ने, तन दी मन तुहानू किवें वरतना है, किवें सफला करना है। सच्चे पातशाह जी जिथे किरत करन दा उपदेश ते कीर्ति देंदे ने, ना प्लस सिमरन सेवा सिमरन सतसंगत करन दा उपदेश। गुर पूरा भेट तो उधार, पूरा गुरु दा मिलाप हो जावे नाम दे दाते दा, जो समर्थ है कृपा करके दूजिया नूं भवजल विचों कढ लैंदा, आप तरिया होया आप आजाद है मुक्त। यही कहा सी नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाई है, आप मुक्त मोहे तार है। ऐसे पूरे सतगुर पूरा भेटे है, पूरी होवे जुगत। हसंदे आ खेलंदे आ पहनंदे आ खावंदे आ, विचे होवे मुक्त, विचे मुक्त हो जांदी। हसदे आ खेडदे आ खांदे आ पहनदे आ, सोहना जीवन बतीत। माया विच रहिंदे आ, संसार विच परिवार विच रहिंदे आ ही गुरु दा बख्शिया नाम है, गुरु दी बख्शिश है। सेवा सिमरन है, सतसंगत है, कथा कीर्तन दे नाल अटैचमेंट है, मन दी तन दी मन दी सिख दा वच उधार हो जांदा है। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेट तो उधार। पूरे गुरुआं दे सतगुरु गुरु वाले बन के उधार हो जांदा है। गुरसिखो ये माया विचों बचन दा ही यतन है, यही तरीका है, पूरे गुरां तो बिना इस निकलिया नहीं जाता है। ऐसे झमेले ने, ऐसा झंझट है, जंजाल है माया का, रहाओ रहाओ वाली तुक सिद्धांत महाराज जी ने दिता है। अगे यदा होर सुभा जो है बयान

पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया।

साधु संग परापते नानक रंग मनानो हर जेठ रंगीला तिस्तानी जिसके भाग मथानो असाड़त पंदा तिस लगे हर नाहो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुए पाए बगुचिए गल पई सो जम की फास जेहा बीजे सोलने मथे जो लिखिया सो रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगे होए खिलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिंदु जाको नहीं नानक की अरदास असाड़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रता सच रंग एक

पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगाल मद माधु गावे ललत बिलावल गावे ही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पातरो द्वितीय माल कौशिक अलापे।

मारू मस जंग में वारा प्रबल चंड कौशिक उबारा खोखट पौरण दिगाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुनि आयो हिंडोलो पंच नार संग सोद उठे तान कलोलो गायन तार मिलावही तिलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सर सिरी लय पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बे मंगल सुहाए सरस बाने आए बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र

जीवन का महात्म सतगुरां ने बख्शिश किया। आयो सुन पढ़न को बाणी, इसके अनुसार सतगुरु जी सारिया संगतां दे उत्ते अपनी मेहर वरसाई रखन, कृपा वरसाई रखन, ते इस तरह दिहाड़े मनाउण दा उपराला बख्शिश करदे रहन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।